0: 89.1, 89.3 Supreme Radio.
1: डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।